जापयस्पदि जब कार्य कछ न दिष्टे तप अपन तब कहते होता जब तारी अपन सुन सुमा तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चैन न जब तो तब हर्ख सो कहो किसे व्याप तो जब अपने आप या पर ब्रह्म तब मोह कहाँ किसो वत परम आपन खेले आवर्ती जा नानक करने हर न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक अग में अपार तब नर्क सुरु कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुबह तब शिव सक्त कहो हो कित ठाए जब आप अपनी ज्योत रह तब कवन निडर कवन कत डरे आपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अगामे अपार अविनाशी सुखी अपने आसंत जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए जब अभिगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किछ पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तब कान छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही अचरजा नानक अपन रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो हो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल छिद्र लगत कहो किस जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किस भूकवन तिपता वह कर्ण करावन करने हर नानक करते का नाह सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे प्रवीण तय वेद कतिव का कोचीन जब अपने आप उरता रह तो सगने अप सगन कहाँ विचार है जय अपने ऊंचे अपने अपने रहते कौन ठाकुर कौन कही है चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय चल छेद अपेद समाया ऊहा किसे व्याप्त माया बस को आपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश जय के एक एक भगवंता द कौन चिंत किस लागे चिंता

बृहस्पति। आप कहते आप सुनने हरि अपे के आप विस्तार जात पावे था श्रेष्ठ उपाय अपने पाणे ले समाये। तुम ते भिन्न ही किच होए आपन सो सब जगत पर होए जाको प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत्का बेता नानक सकल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबता कह हथ दीन दयाल नाथ को नाथ। जिस राख दिस कोय न मारे सो मुआ जिस मन हो बिसारे तिस ता जे अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार। नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब उपर होवत कृपाले अपने कर्तव्य जाने आप। अंतर जामी रहे हो व्याप प्रथ पाले जियन बहु पात जो जो रचो सुति सत्यात। जिस पावे तिस लय मिलाए भगत कर है हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया। करन हार नानक एक जानिया जन लागा हरे कै नाए तिसकी आस न बिरती जाए। सेवक आओ सेवा बनयाई हुकम बोझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं बीचार जाकै मन बसिया निरंकार। बंधन तोर पए निर्वैरे अंधिन पूजे गुर के पैरे लोक सुखिए पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मिले साथ संग मिल करहो नंद गुण गव प्र परमानंद राम नाम तत् करहो बीचार। दुर्लभ देखा करहो उदार अमृत बचन हर के गुण गाव प्रांतरण कहे सुवाओ। आठ पैर प्रपेखो नेरा मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा सुने उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक पल पावहो। हालत पल दोले उसवार राम नाम यंत्र उतार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे ते साच परीखिया। मंत्र नाम जपो लिबलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करहो व्यापारी दरगह ने बह केप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे नानक बवना आवे जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए उभरे रखन हर ते आए। निरपा जपै सकल भाव मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखे तिस ना ही दुख नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाय मिटै अहंकार ते जन को कोई न पहुँचन हार श्री उपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन

लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे जिसनु पाई सा पाई दविंदर सिंह जी सोडी बड़े उत्साह नाल इना शब्दां दी कथा करके उस पुरानी याद नु ताजा करते हुया पाई सा पाई गोपाल सिंह जी नु श्रद्धांजलि अर्पण कीती है। ते इना शब्दां दा संगीत उसे पुराने ढंग नाल ही महान संगीतकार श्री के एस नरूला जी ने दिता है। टी सीरीज सुपर कैसेट्स वालों ए उम्मीद करते हां कि सारे माई पाई इस दिती हुई श्रद्धांजलि दा रस मानणगे ते सुपर कैसेट्स नू धन्नवादी बनाउणगे।

जे सतगुरु नदर करे। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। ऐ सतगुरु आ निमक मात्र भी तू मेरे हिरदे विच वसदा है ना, भाव जिन्ना समा अख चमकण नूं लगदा है, तू इन्ना समा भी मेरे हिरदे विच वसदा है ते मेरा हिरदा ठंडा हो जाता है, मेरा तन मन शीतल हो जाता है। ऐ सतगुरु बख्शिश करो, सदा ही मेरे हिरदे विच वसिया करो, नाम नाल मेरी झोली भर देवो। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, किथे खुशियां किथे खेड़ा जिथे सतगुरु दी नदर होवे। ते सतगुरु दी नदर किथे होंदी है, जिथे सिमरन है, जिन्हां घरां विच नितनेम है, प्रभु दा जाप है, उथे सतगुरु दी नदर होंदी है। छेवें सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज, सतगुरां दे समें भाई पल्ला होया है, मां ते पुत्र कखां दी कुली विच गुजारा करदे ने, हथ दी गरीबी है, सवेरे खा लेंदे ने ते शाम दा फिक्र लगा रहिंदा है। पर सतसंगियो, इस मां ने बच्चे नूं सिख्या किहो जी दित्ती है, भी ऐ पुत्र तू मैनू कम तो जान तो पहला कीर्तन सुना के जाया कर, नितनेम सुना के जाया कर, हर रोज कम तो जान तो पहला पल्ला अपनी अम्मा नू नितनेम सुनांदा है ते फिर कीर्तन भी एक घंटा सुना देता है, फिर कम ते जांदा है। एक दिन कीर्तन कीता, जदों टुरन लगा ना घरो कम वास्ते, ते अम्मा की तक रही है, पल्ले दे अखां विच हंझू ने, चेहरा भी उतरिया उतरिया लगता है, पुत्र तू ठीक नहीं है, उदास लगता है। अम्मा तू आखदी सी वी जेड़ा मन ला के कीर्तन करता है, सुनता है, बाणी पढ़ता है, जो मंगे उसनू मिल जाता है, तू आखदी सी ना भई पुत्र तू की मंगदा होंदा है। है मेरी अम्मा मैं हर रोज कीर्तन करके ये अरदास करदा भई सतगुरु असी बड़े गरीब हां, तू बड़ा दूर वसदा है, मेरे कोल इन्ने पैसे नहीं कि मैं अपनी अम्मा नू लेके तेरे दर्शन कर जावां, किवें तेरे दर्शनां नू तड़फदी रहिंदी है, तू जे किते बख्शिश करे ते गरीबां नू घर आके दर्शन दे जा। भुल्ले दी मां ने सुनिया ते छाती नाल ला लिया, सतगुरु कोई गल नहीं, कोई उलांबा नहीं, असी गरीब हां, रहण वास्ते चंगा मकान नहीं, खाण वास्ते चंगा प्रशादा नहीं, कोई गल नहीं, पर तेरा लख लख वारी शुक्र है, तू मैनू नाम दियां दातां दित्तियां ने, किहो जिहा पुत्र बख्शिया, नाम दियां दातां दित्तियां, पुत्र जरूर अपनी भावना विच फर्क हो सकता है, गुरु दियां रहमतां विच कोई फर्क नहीं होता। पल्ला नित कर्म अनुसार कम ते गया है, सारा दिन मेहनत मजदूरी कीती है, आ जदों शाम नू घर वापस आ रहा है ना, ते रस्ते दे विच पल्ले नू एक मित्र ने रोक लिया, ओए पल्लिया जिस गुरु दा कीर्तन तू रोज करदा है
आ लागे ही अपने पिंड विच ओ गुरु आए हुए ने। पल्ले नूं चाह चढ़ गया, गुरु आए हुए ने। नस पिया इस पासे, दौड़ के गया, मैनू ही दर्शन देन आए। जदों इस पिंड विच पुजा ते आ सामने तख्त ते छेवें सतगुरु हरगोबिंद महाराज बैठे ने। बहुत सारी संगत दर्शन करन वास्ते खलोती है, लाइन लगी हुई है लंबी, ते विच पल्ला भी जाके खलो गया। की तक रहा है, जिन्हानू मालक ने तन दिता है उन्होंने तन दे ढेर लाए पे ने। कोई सुंदर रुमाला रख देंदा है, कोई दुशाला सतगुरु अगे रख देंदा है। पल्ले ने भी अपनी जेब विच हाथ पाया, सत्संगियो जेब दे विच कुछ भी नहीं, निका भी पैसा नहीं, नाले अग्गे नूं नमस्कार करन वास्ते हो ही जांदा है। मन दे विच बड़ा दुख पार आया, सारा दिन मजदूरी ते कीती है पर अज दिहाड़ी नहीं ना मिली। अब मजदूर दा केड़ा जोर होंदा है, बेशक मालक आख देवे भी कल नूं कठे ले ले, अज कोई पैसा नहीं। पलिया किड्डा तड़फदा हुंदा सी गुरु दे दर्शना नू, अज तेरे भाग जागे ने ते नमस्कार करन वास्ते निका भी पैसा नहीं। अज ते इंज लगदा है जिमें सारी गरीबी अज ही आई होवे। अज पता लगा गरीबी किड्डा डाढा दुख हुंदा है, बड़ा मन बैराग पार आया। नाले नमस्कार करन वास्ते अगे नूं होई जांदा है ते जेब दे विचों इक रुमाल कढ़िया है, ते रुमाल दे विच की है, इक गुड़दी रोड़ी बनी हुई है। आ गरीबी दे विच कई बार एहो जे दिन भी आ जांदे ने, गुड़दी रोड़ी खा लेनी, पानी रज के पी लेना, रुमाल जेब चों कढ़िया है, नाले अगे हो ही जांदा है मत्था टेकण वास्ते। ओ मेरे सतगुरु, दिलां दियां जानण वाले दूरों ही इहदे वल देखी जांदे। जदों असी गुरु घर दी दलीज ते पैर रखते हां ना, साडे मन दे विच की है गुरु बोलण तों बगैर ही जाण लैंदा है। इहदे मन दे प्यार नूं गुरु दूर बैठे जाण गए देखी जांदे ने। सतगुरु आप अपने आसन तो उठ के अगे नू आ रहे ने। संगत हैरान हुई, किन्ने नमस्कार करन वास्ते खलोते ने ते सतगुरु उठ के टुर पए। इधरों पल्ला मथा टेकन वास्ते अगे नू बढ़ रहा है पर नीवी पाई हुई है, सोचा विच डुबिया होया है। सतगुरु गरीब हां, कोई बेटा नहीं लिया। इन्हें नू सतगुरां ने आके आवाज मारी, लिया वे पलिया तेरिया गंडा मैं खोल देगा। रमाल पकड़िया होया है ना, अच गंडा खोल रहा है। लिया तेरिया गंडा मैं खोल देगा। सतगुरां नू देखिया ना, हैरान हो गया। सतगुरां ने रमाल इहदे हाथ चों पकड़ लिया, आप गंड खोली ते एक गुड़ दी रोड़ी कढ़ी ते मुंह दे विच पा लई। ओए पल्लिया, तेरे जिन्नी मिठी पेटा ते अज कोई भी नहीं लेके आया। किन्नी मिठी पेटा ले आया। पल्ले ने सतगुरां दे चरण पकड़ लए। सतगुरु मां कोलों तेरी शोभा सुनदा हुंदा सी, तू गरीब नवाज है, मेरी अम्मा गल्लां करदी हुंदी सी, अज ते अखां नाल तक लिया, तू ते सची गरीब नवाज है, सची गरीब नवाज है। चरणा नूं पकड़ के हंजुआं नाल तो दिता, दर्शन कर करके रजदा है नहीं। सतगुरु हाथ जोड़ के पल्ला आख रहा है, जे तुसी हुक्म करो ते मैं नस के जा के अपनी मां नूं भी लै आवां, वो भी तुहाडे दर्शन कर लवे।
ਲੈ ਆਵਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਓਏ ਪੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਚੱਲੀਏ ਪੱਲੇ ਦੇ ਘਰ। ਪੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਓਏ ਪੱਲਿਆ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਮੈਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾਈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਧਰੋਂ ਪੱਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਾਂ ਆ ਦੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ। ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਜੇ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਪੱਲੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਕ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਛਕ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਛਕਾ। ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਡ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ।

हे पवित्र शब्द, सतगुर अपने सुनी अरदास, कारज आया सगला रास। जब सतगुर के चरणों में अरदास की, फिर सतगुर ने अरदास सुनी। जेड़ा अरदास सुनता है, जेड़ा अपने सिख की लाज रखता है, फिर उसके चरण तो के पीड़ नूं क्यों ना मन करे। कई कहिंदे ने अरदास की, पर अरदास पूरी नहीं हुई। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का महावाक है, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। अरदास कभी बिरथी नहीं जाती। श्री आनंदपुर साहब हजारां संगतां दर्शनां वास्ते आंदियां हन। इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची, वह भी आए हैं। एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे। इस बच्ची दे माता पिता ते चले गए, पर ये ना गई। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महल माता साहब देवा दे कोल ये बच्ची रहन लग पई। समा बीतिया, वसाखी वाले दिन केसगढ़ की पवित्र धरती से धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत की दात दी। इस बच्ची ने भी अमृत छकिया। पहला नाम बसंत लता सी, अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई। श्री आनंदपुर साहब के किले में जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबा ने आनंदपुर साहब का किला जिस वक्त छड़िया, सरसा नदी पार की थी। सरसा नदी पार किया, गुरु साहबान का सारा वही इतने आके विछड़ गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादे ते 40 के करीब सिख एक पासे, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादे अते माता गुजरी एक पासे, सारा परिवार और सिख विछड़ गए। इस समय जिहड़ी ये बसंत कौर सी, इहदे हाथ विच भी नंगी कृपान है, कमर कसा कीता है। यह भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मनां नाल लड़दी हुई नदी पार करती है। ठोकर लगी, थले डिग पई। सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए। समुंद खान ने कहा, बसंत कौर, ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना, ना कोई तेरा सिख भरा, मेरी बेगम बन जा, राज करेंगी। पर बसंत कौर ने कहा, समुंद खान, मैं कलगियां वाले पिता का अमृत छकिया, मैं प्रण किया, दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होगा, अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है। बसंत कौर नूं कैद किया गया, तसीहे दिते, लालच दिते, पर बसंत कौर डोली नहीं। आखिर एक कैद खाने विच बसंत कौर नूं कैद किया गया। समुंद खान उस कैद खाने विच आया, बसंत कौर नूं कहन लगा, बसंत कौर, तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया, हुण तेनू बचाण वाला कोई नहीं। समुंद खान अगे होया, बाहां फैलाईयां हन बसंत कौर नूं पकड़न वास्ते, पर बसंत कौर थड़े तो इकदम मुठ के खलोई, गरज के कहन लगी, ओ दुष्टा, परा हो जा, आओ देख, मेरा कलगियां वाला पिता आ गया। जद कहा, आओ देख, मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है, उस वक्त बसंत कौर नूं प्रत्यक्ष दर्शन उस कैदखाने विच हो रहे हैं। ते समुंद खान मानो पत्थर दा बुत हो गया, हिलजुल नहीं सी सकदा। फिर इसने
बेनती की थी बसंत कौर मैनू बख्श दे मैं भुल गया। ते बसंत कौर ने कहा खिमा मंगनी है ते मेरे कलगियां वाले पिता कोलू मंग। फिर इस मुंद खान ठीक होया बसंत कौर दे पैरां दे मत्था टेकया एक महीना कोल रख के सेवा कीती। जद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखी जंगल पहुंचे फिर बसंत कौर नू 100 सवारां दे नाल सतगुरां दे कोल भेजिया। सास यह है अरदास और गुरु दे प्यार दी शक्ति। आओ आपां भी गुरु ते भरोसा रखिए हर दुख वेले सतगुरु साडी भी इसी तरह सहायता करे।

एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपुन भ्रिष्ट गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई

चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै। जाबुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जे ते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा। ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, खिल बिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखेन को शय करता, श्री अस्तुज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़ेला, सुने गुंग जो याहे सुरसना पावई, सुने मूढ़ चितलाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की।

मन मेरु गज जेहवा मेरु काती, मप मप काटों जम की फसी। कहाँ करूँ जाती कहाँ करूँ पति,

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच

लाया प्रीतम अपने तन मन हुए निहाल जा गुरु देखा सामने सो कहो टल गुरु।

सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिक बपरा हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया। हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जप त्या अंत ना पाया भेद परा।

मैं मन तन खोज टंडोलिया क्यों पाया या कथ कहानी संत जना मिल पाया सुनिया कथ कथा मन पानी मेरा मन तन नाम आधार हर मैं मिले पुरख सुजानी गुरपुरख है पुरख मलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी वड पागी गुर सेविया हर पाया सुगड़ सुजानी मन मुख भाग बेहूणिया तिन दुखी रहन वेहानी हम जाचक दीन।

अमर दिन काहू काज ना लाए, सो दिन मोको दी जय प्रभ जी हो, जा दिन हर जस गाए रहो। पुत्र कलत्र ग्रह देख पसाराए, सी मैं उर जाए, माया मद चाक पए उदमा दे, हर हर कबू ना गाए। ए बिद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए, तुम दतार वड्डे प्रभ समरथ, मांगण को दान आए। त्यागो सगला मान महता, दास रेण शरण आए, कहो नानक हर मिल पए के मां, आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवां, कवन थान धीरियो है नामा, कवन बस्त अहंकारा, कवन चैन सुन्यो पर छोयो, मुख ते सुन कर गारा।

मन्यूं। भयो कृपाल ठाकर सेवको सवरे हलत पलाता, तन सेवक सबले आया, जन नानक खसम पछाता। मारू महला पंजवां।

सत होता या सत कर मान्या जो बिनसत सुने चल जानथ पर की को अपनी कर पकरी ऐसे भूल पलानथ। खत्री ब्राह्मण

सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल पाए सुभावत जैसे बसंतर लिप्त सदा निर्मलाई। जिस कर्म खुलिया

जब ते साधु संग भया तो छूट गए निगहार, जिसकी अटक तिस ते छुट्टी तो कहाँ करे कोटवार। चूका पारा कर्म का होए नेह कर्मा, सागर ते कंडा चढ़े गुर कीने धर्मा। सच थान सच बैठका, सच सुहाऊ बनाया, सच पूंजी सच वखरू, नानक कर पाया मारू महला पंजवां। भेद पकारै मुख ते पंडित कामा, मन का माटा मोनी हुई बैठा, या कांति हृदय कल्पन गाटा।

तपसी कर कदेही सा दे मनवाद देस ताना ब्रह्मचार ब्रह्मचर्य कीना हिरदे पया गुमन।

बोलाय पाठ गौरी आप फलायो नानक कीर्तन जाए मिटायो पाश पंखी भूत हर प्रेता बहुबिध जोनी फिरत नेता।

गुरु जी। नाम किस संसार किरण रव सुर तर साखै, उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस पाखै। जन्म ते एहो सके अथ जित नाम हर।

0: केते बर में काढ़त घड़िया रूप रंग के वेश इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते देवदान मुन केते केते रतन
1: समुंदर
0: सुरती सेवक केते नानक अंतना अंत शर्म खंड की बाणी रूप तिथ है काढ़त घड़िया बहुत अनूप तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सुध
1: की बानी जोर तिथे हो न कोई हो
0: तिथे जोत महाबल सूर तिन मह

0: परम रूपे
1: नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे
0: नमो राजेश्वर परम मृदे
1: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
0: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेक्षीय परमेय अपोगीय पुक्ते
0: नमो जोग जोगेश्वर परम युक्ते
1: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे
0: नमो प्रेत प्रे देवेशु तर्मे
1: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
0: नमो छा छा नमो पू पू पे
1: नमो दान दाने नमो मान माने
0: नमो रोग रोगे नमो तंसनाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्र
0: नमो ईष्टीचे नमो तंत्र तंत्रं
1: सदा सच्चिदानंद सर्वं पर्णासाई
0: अनुपे अरूपे समस्तु निवासी
1: सदा सिद्धदा बुद्धदा बृहत्कर्ता
0: अदो ऊर्ध्व अर्धं अंगंग हर्ता
1: परम परम परमेश्वरं पोषपालं
0: सदा सर्वदा से दाता दयालं
1: अचेदीय पेदीय नामंग कामं
0: समस्तो पराधि

0: प्रसाद कतते के अछज दिस के आपिज पे सा
1: के आ गंज कर में के आ पंज पर में
0: के आ बिज लोके के आदित सुके
1: के आ दूत भरने के प्रभुत करने
0: के राजन प्रभा है के धर्मंग तुजा है
1: के अशोक भरने के सर्वा पर में
0: के जतन कृति है के छत्रन छत्री है।

0: के अब गुलगुना है कि शाहनशाह है,
1: के
0: राजक रहीम है के करमन करीम
1: है,
0: के सर्वत्र माने के सर्वत्र दान्य, के सर्वत्र दिस है के सर्वत्र भिस है, के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र दिस है के सर्वत्र भिस है, के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज्य, के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण, के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान, के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मान, के सर्वन के सर्वन कली में के परमन फही में, के हुस्नल वजू है तमामल रजू है, गनीमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते, तमीजुल तमामे रजूअल निदान, अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है, निरुक्त स्वरूप है त्रिमुकुट विभूत
1: है,
0: सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है, समस्तुल सलाम है सदैव लकाम
1: है,
0: ओंगाद रूपे अनाद स्वरूपे, त्रिवर्गन त्रिबादे गंजे अगादे, त्रिपुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है, निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है, निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है, चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख
1: है,
0: अजय है अभय है अपूत है अतूत
1: है,
0: अपगत है बिरकत है अनास

0: सुनित है अजात है सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं रसावल छन्त प्रसाद नमो नर्क नासे सदैवं प्रकाशे परमातं परमाते सदा सर्वसाथे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र साकं सरीक है मितो अमीक है
1: साहेब दिमाग है के हुस्नुल चराग है
2: कामल करीम है के राजक रहीम है
1: के रोजी दहिंद है के राजक रहिंद है
2: करीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है
1: गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज
2: है हरीफुल शिकंद है रियासल फिकंद है
1: कलंकन परनास है समस्तुल निवास
2: है अकद्युल गनीम है रजाहिक रहीम है
1: समस्तुल जुबा है के साहेब के राज है
2: नरकन परनास है मेस्तुल निवास है
1: के सैफुल गवन है हमें सुल रवान है
2: तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है
1: परम परम ईस है समस्तुल अदीस है
2: अदेशुला लेख है अमेशुला पेख है
1: जमीनुल जमान

0: अमीकुल इमा है,
1: करीमुल कमाल है, किजुर्रा जमाल है,
0: कि अचलन प्रकाश है, कि अमितो सुभा
1: है, कि अजब स्वरूप है, कि अमितो भूत है,
0: कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रभा है,
1: कि अचलन अनंग है, कि अमितो अपंग है,
0: मधुपा छंत्र प्रसाद मुनमन पर नाम गुण गन मुदाम,
1: हर भर अगंज हर नर प्रपंज,
0: अनगन पर नाम मुन मन सलाम,
1: हर नर अखंड भर नर अबंड,
0: अनभव अनास मुन मन प्रकाश,
1: गुण गन पर नाम जल थल मुदाम,
0: अंचिज अंग आसन अपंग,
1: उपमा अपारगत मित उदार,
0: जल थल अमंड दिस्विस अपंड,
1: जल थल महंत दिस्विस बेअंत,
0: अनभव अनास ते तट तुरास,
1: आजान बाहु एक के सुदाहु,
0: ओंकार आद कथनी अनाद,
1: खल खंड के आल गुर भर अकाल,
0: कर कर पर नाम चित चरण नाम,
1: अंचित गात अजित न बात,
0: अंजज गात अनरंज बात,
1: अंटुट पंडारे अंटठ पार,
0: आटीठ तरम अत डीठ कर,
1: अनभर नांत दाता महंत,
0: हर बोल

0: माय कहे।
1: पपंजन है और गंजन है,
0: विज्ञापन है जब जापन है,
1: अकलन कृत है सर्वाकृत है,
0: करता कर है हरता रे,
1: परमात्म है सर्वात्म है,
0: आत्म बस है जासिक।

0: कमे
1: एक अछरी छंद अजय अले अबे अबे
0: अबू अजू अनास कास
1: अगंज अपंज अलक अपाक
0: अकाल दयाल लेख पेख
1: अनाम अकाम अगा अडा
0: अनाथे परमाते अजोनी अमोनी
1: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
0: अकर्म अपर्म अदके अलेखे
1: भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल पढ़ना में नमस्तुल पढ़ना से
0: अतंजुला नामे समस्तुल निवासे
1: निकाम प्रभुते समस्तुल स्वरूपे
0: कर्म परनासी सुतर्म प्रभुते
1: सदा सचदानंद सत्रन परनासी
0: हरि मल को निंदा समस्तुल निवासी
1: अजाय प्रभुते गजाय गनी में
0: हरियं करियं करी मुल रहीम में
1: चतर चक्रवर्ती।

0: सात समुद्र लोक गयो पर लोक वायो साच को सुन लियो सब जिन प्रेम की ओ दिन ही प्रभ पायो
1: काहुल
0: क्यों रवाची दिशा में काहु तो चाको।

0: सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया
1: आप हाथे मुझे भरिए मन काल का त्रास निवरिए
0: पूजो सदा हमारे पच्चा श्री सुजियो करे और अच्छा
1: राखे में राखन हारे साहेब संत साए प्यारे
0: दीन बंधु सन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता
1: काल पाए ब्रह्मा पुत्रा काल पाए शिव जूव तरा
0: काल पाए कर विश्व प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
1: जवन काल जोगी सब की हो बेरार ब्रह्मा जो थी हो
0: जवन काल सब लोग

0: रक्षा होए कहे सब काला दुष्ट हरि कर कट काला
1: ताप
0: रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शासक सके न कोई।

उचेते ऊंचा भगवन सगल समगरी तुम रह सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौने दया वै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यांतर के। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अनिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यांतर के। खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यांतर के। खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यांतर के। बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे।

बहादुर शाह बड़ा हैरान होया। संगत विच बैठा सोची जाता है, अगे भी कई बार सतगुरां नूं मिलिया, होर भी संगत आती है, पर जदों मैं मिलदा हां ते किड्डे प्यार विच भिज के सतगुरु आखदे ने धन गुरु रामदास, भी इस गल दे पिछे केड़ा राज छुपिया है, बैठा सोची जाता है। सतगुरु आखन लगे, क्यों बई बहादुर शाह केड़ियां सोचां सोचदा है, की सोचदा है? सतगुरु तुसी दिलां दियां जानन वाले, तुसी बुझ गए हो, जान गए हो मैं की सोचदा। ते सतसंगियो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ संगत नूं इक केड़ी गाथा सुना रहे। किंदे ओ समा सी, तन गुरु रामदास पातशाह श्री अमृतसर दे विच कार सेवा करा रहे सन। गुरु रामदास महाराज मौत संगत सेवा वास्ते आंदी, आ हुण भी सेवा आंदी है ना। कुछ बंदे निष्कामी होंदे ने, ते कुछ सेवादार जिन्हां ने दिहाड़ीदार होंदे ने, अपनी मेहनत मजदूरी लेंदे ने। इसे ही तरह कुछ सेवादार निष्काम सेवा करन वाले ते कुछ दहाड़ी वाले आंदे सन। सारा दिन सेवा हुंदी, जदों पेंदी शाम ते गुरु रामदास पातशाह आप आंदे, दो लाइना लग जांदियां, एक कितार दे विच ओह खलो जांदे जिन्हां ने निष्काम सेवा कीती है, ते एक पासे जिन्हां ने दिहाड़ी लैनी। सब तो पहला गुरु रामदास पातशाह निष्काम सेवकां कोल जांदे, कले कले नूं मिलदे ते किड़ियां किड़ियां असीसां देंदे। फिर जिन्हां दी जिन्नी भी दहाड़ी बनदी है, दहाड़ीदार वल उधर जांदे ते जिन्ने जिन्ने किसे दे पैसे बनदे ने दे दिंदे। आ इक दिन दी गल है, शाम दा वक्त है, दो लाइना लगियां होईयां ने ते सतगुरु रहमत करन आए निष्काम सेवकां वल, ते सतगुरु की देख रहे ने, एक बुढ़ा बाबा अत दी बजुर्गी जेड़ा हर रोज शाम नूं दहाड़ी लै लैंदा है ते अज निष्काम सेवकां विच खलोता है। सतगुरु निष्काम सेवकां नूं मिल रहे ने, असीसां दे रहे ने। जदों इस दे कोल गए बाबे दे बाबा, तैनूं भुलेखा लग गया है कि सारे सेवक निष्काम ने, ओह लाइन लगी हुई है, तू उधर खलो मैं उधर भी आवांगा, तू भुलेखे विच लग गया। सतगुरु बोली जांदे ने, बाबा अखां विचों हंझू केरी जांदा है, मैले फटे गल विच कपड़े, अत दी बजुर्गी है। सतगुरु रोज पैसे लै जांदा मुक जांदे ने, आज मैं किसे दे कोलो सुनिया है दुनिया दा धन मुक सकदा है, पैसे मुक सकदे ने, पर गुरु रामदास पातशाह तेरी रहमत नहीं मुकदी, अज बख्शिश करो, रो के आख रहा है बाबा। पैसे लेंदा हां, गरीबी है, मजबूरी है, कित्थों खावां, अज बख्शिश करो, अज दी दहाड़ी दे मैं पैसे नहीं लेने, अज दी दहाड़ी दी मैनू बख्शिश दे दे। ते गुरु रामदास पातशाह रहमत दे घर विच आए, इहदे सिर ते रख के हथ आखण लगे, जा बाबा तेनू निहाल निहाल निहाल कीता। तीन वार सतगुरां ने आखिया, जा बाबा तेनू निहाल कीता। इनी गल आख के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चुप कर गए, संगत नूं सुना रहे सन। ते फिर विच्चों बहादुर शाह संगत ते बोलिया, संत गुरु

पर मैनू एक गल दसो, इस गल दे नाल मेरा की संबंध? ये गल दसो। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्यार दे विच भिज के नेत्र बंद करके आखन लगे, बहादुर शाह ओ बुढ़ा बाबा कोई होर नहीं, ओ तू ही होई सी जो एक एक प्रसादे नू तरसदा रहिंदा सी, तू ही होई सी। अज जन्म लैके सारी दुनिया ते राजा राज करदा है, किड्डे किड्डे नौकर चाकर तेरे अगे हाथ बन्नी खलोते ने, आ देख लै गुरु रामदास दीयां रहमतां तेरे कोल अज तक नहीं मुकियां, अज तक नहीं मुकियां, पता नहीं किन्ना चिर तू खाणियां ने, किन्ना होर सुख भोगना है, कौन जाने गुण तेरे चरणा ते डिग पिया, तेरी हो गया अज बहादुर शाह है सतगुरु, तेरे गुणा नू कोई नहीं जान सकता, तेरिया रहमतां नू कोई नहीं जान सकता। सो सत्संगियो बख्शिश हो रही है, इसीलिए गुरसिख नू ए हुक्म है, तू पुन दान करदा रहा, तू गरीब दे मूह दे विच पांदा रहा, जिथे धन कमा के अपने बच्चियां दे मुख पांदा है ना, गरीब दे मूह विच भी पाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आख रहे ने, गोलक राखे ने जो शलका करे व्यापार, कहे गोविंद सिंह लाल दी भोगे नरक हजार। जेड़ा दसवंद नहीं ना कटदा वो जीवदे जीव ही नरक भोगदा है, उहदा सारा धन हॉस्पिटलां विच कचहरियां विच मुकदमियां विच ही लग जाता है, भोगे नरक हजार, हजारां नरक जीवदे जी भोगदा है। नहीं बई, नेक कमाई करके किसे भुखे नू भोजन छका दिया कर, किसे तन दे नंगे नू कपड़ा पहना दिया कर, किसे गरीब दे बच्चे दी पढ़ाई दी जिम्मेवारी ले लिया कर, किसे गरीब नू किताबां ही ले दिया कर, किसे गरीब दी बच्ची दी शादी ते पैसे खर्च दिया कर। गुरु घर विच धन दी लोड़ है, उथे सेवा ला दिया कर। दसबंद कढ़न दे कई तरीके ने, कई तरीके ने, पर जरूर कढ़िया कर, कोई फर्क नहीं पैंदा। महीने दे विच 30 दिन ने, ते 2 दिन दी कमाई ला दिया कर गुरु लेखे, ते सतगुरु बख्शिया करेगा। बाबा नंद सिंह दी बख्शिश करदे सन, औखा वेला आ जावे ना ते कदी भी दसवंद नहीं रोकना चाहिदा। देखो बाबा जी दे किहो जे बचन ने, औखा वेला आ जावे कदी भी दसवंद ना रोको, फिर सौखा वेला छेती आ जाता है, सौखा वेला छेती आ जाता है। कौन जाने गुण तेरे, ऐ मेरे मालक तेरे गुणा नू कौन जान सकता है।